सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 FM रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका पसंदीदा नॉन स्टॉप गपशप। तो सुलक्षणा पर्वत रहेगी आपके साथ 10:02 से लेके 11 बजे तक। और ऐसा है दोस्तों कि आपको नंबर पता है 2243712, सो यू कैन डायल द नंबर अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो। और फिलहाल ये तो हो ही रहा होगा दिमाग में कि आज किस विषय पे हम बात करेंगे, किस विषय पे बात करनी होगी, तो वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन क्यों ना आगाज करूं मैं कार्यक्रम का उस गीत के साथ जिसे मैंने लिया है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से।

इस गीत को आपने सुना, एनर्जी बूस्टर वाले गीत को आपने सुना, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन की आवाज में बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है विशाल एंड शेखर ने। और अब आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, क्योंकि मैं बता देती हूँ कि आज नॉन स्टॉप गपशप में किस विषय पर हम और आप गुफ्तगू करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, वो है एक स्वस्थ समाज के लिए सिविक सेंस यानी नागरिक बोध का जो ये नियम है ना, उसका पालन करना कितना जरूरी है आज के दौर में। यानी कि अगर इन शॉर्ट कहूं कि सिविक सेंस या जो नागरिक बोध है वो कितना जरूरी है आज के दौर में इसका पालन करना। और फिलहाल द नेक्स्ट ट्रैक आजकल जिंदगी, शंकर महादेवन की आवाज में फ्रॉम द मूवी वेक अप सिद्ध।

मौसम संबंधी सूचना बुधवार 12 अगस्त 2026। हल्की से मध्यम गरज और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति स्पीड से तेज हवा चलेगी अगले 2-3 घंटों में। दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की बहुत संभावना है। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:13 और फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है दिल से दिल तक वाला चैनल, जहां हम और आप कनेक्ट होते हैं हार्ट टू हार्ट और प्रोग्राम चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और आज जो विषय हमने रखा है वो विषय है एक स्वस्थ समाज के लिए सिविक सेंस के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है आज के दौर में। और ऐसा है कि बाहर जो है वो मौसम जो है वो बड़े नाजुक अवस्था में है। नाजुक अवस्था इसलिए कह रही हूँ कि दक्षिण 24 परगना में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। तो यही कहूंगी कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो छतरी लेके निकले और पूरे सावधानी से निकले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और फिलहाल अगला गाना फिल्म गुरु से श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज में बरसो रे मेघा।

जब हम सिविक सेंस नागरिक बोध की बात करते हैं तो हर व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस पर सफाई रखने, दूसरों की आजादी का सम्मान करने, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने, लाइन या क्यू में खड़े होने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाने जैसे मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों से जब मैं बातचीत कर रही थी इस विषय पर तो कईयों का कहना था कि ऐसा है कि कई बार जो है लोग पब्लिक प्लेस में या सड़कों पर ऐसे अनुष्ठान करते हैं कि अगल बगल के जो पड़ोसियों के जो जगह है उसे भी वो डैमेज करते हैं और उन्हें एक मुद्दा मिल जाता है कि अरे देखिए हम तो कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं और क्या है कि मतलब चारों तरफ खुशी फैलाना चाहते हैं लेकिन उसके आड़ में वो अगल बगल वाले को परेशानी भी करते हैं। इसी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि लाउड स्पीकर पर इतने जोर से गाने प्ले करते हैं

कि मतलब वो ये भी नहीं सोचते कि हाँ अगल बगल कोई वृद्ध हो सकता है या फिर कोई बीमार हो सकता है या फिर कोई बच्चा जो है अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। इससे बहुत ही वो क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस तरह के काम करते हैं ना, जो सिविक सेंस का पालन नहीं करते, दरअसल क्या है ना, उनमें एक कूट कूट कर घमंड भरा होता है, या फिर मैं कहूं तो वो इतने इलिटरेट होते हैं कि उन्हें मानवता का कोई ध्यान ही नहीं होता है कि हाँ हम भी इंसान हैं और अगल बगल भी इंसान ही रहते हैं। तो हम कुछ ऐसा ना करें अपने खुशी के लिए, अपने बड़बोलापन के चलते, कि दूसरों को जो है हम दुख क्यों पहुंचाते हैं। क्योंकि क्या है कि खुशी तो ऐसी होनी चाहिए जो फूलों की खुशबू की तरह है, कि फूल अपने जगह पे रहे लेकिन खुशबू जो है वो दूर दूर तक फैलती रहती है। और इस पर ढेर सारी बातें आगे भी करूंगी, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जो पूजा के फूल होते हैं या फिर जो हवन सामग्री होते हैं वो ले जाके गंगा में डाल देते हैं। कभी आपने गंगा से पूछा, जानना चाहा कि गंगा को कैसा लगता होगा जब आप अपने घर के वेस्ट जो हैं वो वहां पे जाके आप डाल देते हैं, जबकि हम मानते हैं कि गंगा का पानी अमृत समान है। और इसी बात पर सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज में फिल्म राम तेरी गंगा मैली का टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:28 और फिलहाल हमारे टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं अंबाला से चंद्रमोहन गिरी। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में।
1: सुप्रभात सुलक्षणा जी।
0: ऐसा है सर,
1: हाँ मैं आपके माध्यम से रेनबो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ऐसा है सर कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा विषय रखें जिससे कि हमारे पूरे देश में जो है वो एक अजीब किस्म की बदलाव आए, अजीब किस्म इन द सेंस की खूबसूरती के तौर पर वो बदलाव निखर कर आए, क्योंकि वो निखार तभी आएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए सिविक सेंस, नागरिक बोध के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है आज के दौर में खास करके। और इस विषय से संबंधित आपके भी विचार हम जानना चाहेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये जो प्रोग्राम है नौजवानों के ऊपर है, लेकिन मैं तो कहूँगा नौजवानों ने ये सभी जिस जो आपने विषय चुना है सिविक सेंस जिसे कहते हैं नागरिक कर्तव्य के प्रति, तो ये सभी के लिए अप्लीकेबल रहता है। ये सभी नौजवानों के लिए नहीं, सभी नागरिक जो है उनके लिए है।
0: अच्छा, ऐसा है कि देखिए कौन कौन से नियम आपको लगता है कि जिसे घर से ही शुरुआत करनी चाहिए?
1: जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे इसमें सबसे पहले सिविक सेंस बेसिक क्या होता है, इसका जो मेन जो मुख्य अर्थ क्या होता है कि हम समाज और सार्वजनिक स्थलों के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य और नैतिक मूल्यों को समझना है। ये चीजें कि अपने अंदर अपने आपको अपने अंदर से आनी चाहिए, तभी आप ये समझ सकते हैं क्या हो रहा है।
0: अच्छा मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि कभी मान लीजिए कि आप सफर कर रहे हो और बस में हो, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो और देख रहे हो कि हाँ बगल खिड़की के बगल में बैठ के कोई गुटखा फेंक रहा हो, बाहर खिड़की के बाहर थूक रहा हो, तो फिर उस वक्त आपका क्या रवैया होता है? आप कौन सा कदम उठाते हैं, चुप रहते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं ये गलत है?
1: नहीं बात नहीं, देखने में बुरा जो लगता है बोलना उचित तो है, पर मेरा क्या कहना है कि भाई ये चीज सभी इंसान सभी को ये सोचनी चाहिए। देखिए अभी ऐसा मैं बता दूं, कई बार हमने ये पॉजिटिव न्यूज भी आती है हमारे में। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था नॉर्थ ईस्ट की कोई ट्रेन थी, उसमें ट्रेन में लोग ट्रेवल कर रहे थे, सब अपना जो यूज जो जैसे कप या कोई खाने पीने रख रहे हैं

0: प्लास्टिक में अपना क्या क्या रख रहे हैं, वहाँ पे बाद में उसी को ले जाके डस्टबिन में फेंक रहे हैं।
1: और ये
0: मैंने कुछ समय देखा, मैं तो फिर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वही में कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेन के नीचे ही खाया पिया, नीचे रख दिया करके।
1: हाँ, केला खाते हैं और छिलका फेंक देते हैं, मूंगफली खाते हैं वहीं फेंक देते हैं।
0: ट्रेन के अंदर की बात होती है,
1: और
0: बाहर का भी सेम वही केस है, ट्रेन के बाहर भी सेम केस, जबकि सबको अच्छी तरह से पता है। और ये नहीं बोलूँ की मैं स्लीपर जनरल की बात करूँ, एसी पकड़े एसी टूट है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि एलिट, वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग ही बताओ, वो सोचते भाई खाया रख दिया, वो तो छोटे बस बेचारा वो ब्लूम करने झाड़ू करने आएगा।
1: कई बार ये भी देखा गया है कि मतलब देश के जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कोई ब्रिज हुआ या फिर कोई पार्क हुआ, वहाँ के जो दीवार है उस पर जो है कुछ गंदे चीज लिख देते हैं या थूक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं।
0: हाँ, ये आपने अच्छा बताया, जैसे जनरल एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने पढ़ा था जैसे हावड़ा ब्रिज का है, हावड़ा ब्रिज में लोग जैसे अभी नया कल्चर स्टार्ट हो गया, पहले से पहले लोग पान खाते, लेकिन अभी गुटखा और इतनी ज्यादा लोगों की संख्या हो गई, वो खाते लेते हैं पर ठोके कहाँ, वो तो है नहीं कि भाई नवाब की तरह अपने साथ पीना लेके कैरी करते हैं, वो तो करना नहीं है। तो क्या करेंगे, जमीन पे, रोड पे, रोड पे क्या दीवारों पे, यहाँ कोने में। मैं कहता हूँ करोड़ों खर्च करती है गवर्नमेंट सिर्फ व्हाइट वॉश करने के लिए और सफाई करने के लिए, अगर ये नहीं हो तो वो पैसे बचेंगे, वही पैसे आपके स्कूल में और हॉस्पिटल में यूज किए जाएंगे। तो जो यही सिविक सेंस कहलाता है कि आपको अपने जो प्रॉपर्टीज है उसको रेस्पेक्ट करो, प्रॉपर्टी क्योंकि आप वेस्ट स्पॉइल कर रहे हो, उसको स्पॉइल करने से देखने में बदला लग रहा है और वो प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रही है।
1: अच्छा, एक और बात है कि आपने देखा होगा कई बार जो है लोग बिल्डिंगों में तो रहते हैं लेकिन दिमाग से जो है उतने उस हाई लेवल की बात नहीं सोच पाते। अक्सर देखा जाता है कि पैकेट में जो है घर का कचरा फेंक बांध कर रखते हैं और चुपके से जो है सड़क पर फेंक देते हैं।
0: उनका है कि बस कि अपने घर से निकल गया बाहर कहीं भी जाए, वो मतलब
1: मैंने घर से कचरा निकल गया बाहर कहीं पे भी जाए,
0: ये अंतर समझना चाहिए घर और बाहर। वो करने जब तक देश को अपना नहीं सोचेंगे तो वो नहीं होगा, उन्हें लगता है मेरा घर ठीक है तो भाई बाहर रोड पे पड़ा है मुझे क्या मतलब।
1: कहीं ना कहीं ये सारे कारण होते हैं कि बारिश के मौसम में जल जमाव होता है।
0: मतलब यही हुआ कि आपको अपने घर को और देश को जो प्रॉपर्टी उसको रेस्पेक्ट करो, उसको देखना है। अगर आपको वो कचरा आपको अगर भाई जो कि हर चीज बना हुआ हर कचरा कलेक्ट होता है तो उसको उसके हिसाब से डिस्पोज ऑफ करें, उसको कचरे को भी डिस्पोजल के लिए मेन चीज होता है, सूखा को अलग रखो गीला को अलग रखो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि हमारे कोलकाता में कारपोरेशन की तरफ से दो बाल्टियां भी डस्टबिन दी जाती हैं, एक सूखा कचरा के लिए और एक गीले कचरे के लिए,
0: पूरा काम कर रही है।
1: लेकिन लोग क्या है ना कि उसको दूसरे काम में उपयोग करते हैं लेकिन उसमें एज अ डस्टबिन यूज नहीं करते हैं,
0: नहीं करते हैं क्योंकि पता है गार्बेज डिस्पोजल तभी होगा, गीला अलग रहेगा सूखा अलग रहेगा, उसी हिसाब से बेचारा जो उसको उसको फिर अपने हाथ से दो कुछ कचरे को अलग करता है, तो क्यों ना वो हम अपने घर से ही शुरुआत करें।
1: बिल्कुल,
0: आपको पता है दो करके रखें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने साझा की। और ऐसा है सर कि मतलब हम तो चाहेंगे कि आप जब भी समय मिले तो जुड़े हमारे 107 एफएम रेनबो के कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में, और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: ये थे अम्बाला से चंद्रमोहन गिरी जी जो हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। यूं ही अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2243 7912, और बाय द टाइम आप डायल करते हैं अगला गाना आप सभी के लिए

0: हाँ कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नन्हे बोल रहा, बाटा नगर से।
0: नन्हे बहुत बहुत स्वागत है आपका, और
1: स्वागत इतना अच्छा प्रोग्राम लाने के लिए।
0: प्रोग्राम तो हर रोज ही अच्छा होता है, और चलिए आपको अगर अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए नन्हे जी कि आप कौन कौन से नागरिक जो बोध कहें कि नागरिक नियम जो हैं वो कौन कौन से नियम पालन करते हैं?
1: जी देखिए दीदी, हम अपने ऊपर से कुछ बात कर ले रहा हूँ, लेकिन ना दीदी खुद अपने आप से सुधर रही है ना, बहुत अच्छा हुआ। ये जो चीज अभी बोली हो ना, जो गुटखा खा के इधर उधर फेंकता है, जो लोग हम लोग ही करते हैं सब, हम लोग नहीं सुधारेंगे तो कोई

0: हाँ, तो इसके लिए है ना कि मतलब अपने आदतों में हम बदलाव लाएं। अगर हम अगर ऐसा करते हैं तो वो तो सही नहीं है ना।
1: नहीं सही नहीं, लेकिन तबीयत का पक्ष इसमें भी गलत होता है यार, आदमी का भी नुकसान होता है कोई चीज में।
0: अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी आप देखते हैं कि अगल बगल के जो आपके लोग हैं वो गलत जगह पे पार्किंग कर देते हैं, घर से रात को तो गाड़ी घर पे रखते हैं और दिन होते ही सुबह होते ही

0: हम उन लोग घर में बुलाने भी जाते हैं, बोलते हैं का दिक्कत है इतना भोर को, बोले गाड़ी वहाँ रास्ते तो कोई भी गाड़ी आ सकते है ना।
1: मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि हाँ हमें गाड़ी सही जगह पे पार्क करना चाहिए, है ना।
0: हाँ,
1: ऐसा ना पार्किंग करें कि हमारे पड़ोसियों को दिक्कत हो।
0: पड़ोसी की दिक्कत हो, कितना सारा गाड़ी की रास्ते के बीच में आके रुक जाता है ना, बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो जाता एकदम।
1: चलिए, आप गुटखा उटका तो नहीं खाते है ना?
0: नहीं, जरा जरा खाता
1: लेकिन जरा जरा खा लेता हूँ। तो ये जरा जरा जो है ना भैया, ये भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जरा जरा जो है बाद में आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और आप जब नियम कायदे का बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है, क्योंकि खाने वाला तो फिर कहीं भी थूकेगा ना, और ये थूकना सही नहीं है, है ना।
0: नहीं दीदी, एक तो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, गुटखा खाने के लिए मेरा ना इलाज भी हुआ है ना, 6-7 हज़ार रुपए खर्च हो गए तब ठीक हुआ मेरा मुँह।
1: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि अब आइंदा से कभी भी गुटखा जो है मत खाइएगा, और अगर कोई खाता है इधर उधर थूकता है तो उसे भी अवेयर कीजिए कि यहाँ वहाँ थूकना जो है ये गलत बात है, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ऐसा है दोस्तों कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2243-7912, एंड बाय द टाइम यू डायल द नंबर मैं प्ले करती हूं अगला गीत। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू प्रूव माई सेल्फ अगेन।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: देखते हैं हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर है तो कौन है और क्या कहना है उन्हें ये भी देखते हैं। हेलो हेलो नमस्कार,
1: मेरा नाम है शुभजीत, बिलकरिया से बात कर रहा हूँ।
0: शुभजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में। और शुभजीत जी ये बताइए कि आप एक अच्छे नागरिक की तरह कौन कौन से नागरिक नियमों का पालन करते हैं, यानी कि हाँ बताइए बताइए।
1: पहले तो ये है कि हम लोग में इंडियंस में मतलब हम खुद इंडियन होके भी बता रहे हैं कि सिविक सेंस का मतलब नहीं जानते हैं, समझते नहीं है और हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कि इम्प्रूव करूं। हो सकता है हम लोग का पहले से ही ये क्या होता है ना, सिर्फ अपब्रिंगिंग नहीं है। आप जब स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं आपके जो आसपास के माहौल है और आप जो उसमें सीखते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो ये बैठ के आपको सिखा सकता है। मॉरल साइंस, मॉरल साइंस एक ऐसा चीज है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं आपकी रोजमर्रा जो जिंदगी है। जैसे कि मैं हमेशा ये मतलब ऐसे हम लोग में भी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हम लोग रस्ते में चल रहे हैं हमारे हाथ में चिप्स का पैकेट है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर नाली में फेंक देते हैं, नहीं तो कोई दुकान के सामने फेंक दिया कि कहीं भी फेंक दिया। हो सकता है कि सब जगह में कूड़ेदान नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी फेंक दो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अपने बैग में रख देता हूँ वो पैकेट, जब मुझे कोई कूड़ादान दिखता है तो मैं वो फेंकता हूँ। और ये जो उससे पहले जो आप गुटखा जो सब पान पान का बारे में बात कर रहे थे, पहले तो ये चीज है कि इससे तो कुछ अच्छा होने वाला है नहीं।
0: नहीं नहीं ऐसा शुभजीत सुनो, ऐसा है ना कि हम पॉजिटिविटी में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि हर रात के बाद सुबह होती है, तो हम आशावादी हों, पॉजिटिव हों, क्योंकि अगर हम आशा रखेंगे अवेयरनेस फैलाएंगे तो जरूर बदलाव आएगा। और ऐसा है ना कि देखो होता क्या है कि कल मैं एक विद्यार्थी से बात कर रहा था तो स्टूडेंट है तो उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है दीदी कि हमारे घरों में सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए, ये हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि जो नागरिक नियम है उसके बारे में वो घर में चर्चा करें और कहें कि हाँ ये कौन कौन से नियम है हमें कैसे पालन करना चाहिए। तो उसका जवाब ये था ना कि मतलब मम्मी पापा भी आजकल दोनों वर्किंग होते हैं, फटाफट सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी में रहते हैं और काम पे निकल जाते हैं, शाम को जो है फिर उनके पास समय नहीं होता है कि वो नागरिक नियमों पर जो है बातचीत करें, भले वो एजुकेटेड हो, काम करते हो और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हो। और दूसरी बात यह है कि उसने ये भी कहा कि ऐसा है कि हम लोग जब स्कूल भी जाते हैं तो ज्यादातर सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में होते हैं और मतलब जिंदगी में और क्या चीजें जरूरी है जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, देश को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने समाज को खूबसूरत बनाने के लिए, इस पर वो चर्चा नहीं करते हैं, सोचते अपना सिलेबस खत्म हो बात खत्म। तो क्या है ना कि बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं।
1: एक्चुअली क्या ना, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इतना एकेडमिक बेस्ड है, जैसे कि आप देश को देखिए, जैसे चाइना को देखिए, जापान को देखिए, वहां पर एक सेक्शन तो ऐसा है कि एकेडमिक है लेकिन एक और सेक्शन है जहां पर आपको जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, जो प्रिंसिपल्स है वो सिखाया जाता है। आप देखेंगे जापान में बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे शायद क्लास 1-2 में पढ़ते हैं, वो खुद अपना खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं, उसको सिखाया जाता है टेबल पहुंचना। तो ये जो चीज है, जैसे कि आप बताए ना कि जो छात्र ने बताया मम्मी पापा, आप तो मैक्सिमम मम्मी पापा लोग सब वर्किंग प्रोफेशनल है, सचमुच ही टाइम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग पढ़ के एक्सपीरियंस करके बाहर जाके भी सीखते हैं। तो ये जो अपब्रिंगिंग है तो बहुत, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, ये तो
0: बिल्कुल सही नहीं कर सकते। देखो देखो ऐसा है ना शुभजीत कि भागम भाग में तो दुनिया जा ही रही है आगे की ओर, लेकिन थोड़ा बहुत ठहराव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ठहराव नहीं होगा ना, संडे के दिन जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन जो है वो बच्चों को सिखाएं कि देखो बेटा, देखो बच्ची, ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर आप सही ट्रैक पे अभी से नहीं चलेंगे तो बाद में किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, है ना।
1: एफर्ट तो देना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो, अगर एफर्ट नहीं देंगे, और ये ना कोई असंभव चीज है नहीं।
0: अच्छा एक बात बताऊं शुभजीत, सबसे खुशी की बात ये है कि हमारे श्रोता जो हैं बड़े जागरूक हैं और मतलब काफी अवेयरनेस की बात करते हैं, एंड दिस इज वेरी गुड साइन कि 107 एफएम रेनबो के श्रोता जो हैं वो मतलब बड़े कमाल के होते हैं।
1: चलिए आप लोग जो टॉपिक लाते हैं ना, उससे इतना

0: कुछ मिलता है हम लोगों को ना, इसलिए शायद आकाशवाणी एक ऐसा मतलब मुकाम पे है जो हम लोग बचपन से, मतलब मैं 96 से सुन रहा हूँ आकाशवाणी, तो तब से लेके आज तक मुझे आकाशवाणी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, मतलब।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है सुभजीत, जब भी समय मिले तो कार्यक्रम में जरूर शामिल होइए, क्योंकि आप जैसे श्रोता जुड़ते हैं तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ऐसा दोस्तों, अगर अब मैं कैसे कहूं कि हाँ समय ज्यादा है, क्योंकि बस 6:30 या 7 मिनट, 5 मिनट बाकी है, और इसमें मैं सोच रही हूँ, चलिए आगे तो पहले आपको एक गाना सुनाऊं, बहुत ही मतलब आशा भरे गीत हो, और जिसे हम सब सुनते सुनते ये संकल्प ले मन ही मन कि आज से हम लाइन में अगर खड़े हैं तो आगे बढ़ने की कोशिश गलत तरीके से ना करें, और अगर हम जहां रहते हैं वहां पार्किंग करनी हो अपनी गाड़ी की, तो किसी के दरवाजे, किसी के खिड़की और किसी ऐसे जगह पे ना करें जहां की किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज हो, या फिर सड़क पर जो है वो ट्रैफिक जैम लग जाए, या फिर आप जब ट्रेन में सफर करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हो, तो स्वच्छता का ध्यान जो है सर्वोपरि है, और कभी भी किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अनुष्ठान करें, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, इतना तो आप सभी जागरूक हैं कि और समझदार हैं, समझते हैं कि कभी भी आप लाउड स्पीकर या फिर साउंड बॉक्स लगाते हो किसी अनुष्ठान में, तो ऐसी कोशिश ना हो आपकी कि हम अपने पड़ोसी को परेशान करें, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी भी परेशान करने पर आ जाए तो फिर तो बात बहुत गलत हो जाएगी ना। तो क्यों ना हम खुशी खुशी आगे बढ़े और अपने खुशी में सबको शामिल करें, जैसे कि साद एफएम रेनबो करता है, कहता है कि आप म्यूजिकली योर्स रहता है आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट, और जुड़ता है दिल से दिल तक। और फिलहाल अगला गाना आशाएं, केके और सलीम मर्चेंट की आवाज में।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:57, यानी कि अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। चलते चलते यही कहूंगी कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जितने भी नियम है जो एक नागरिक को माननी चाहिए, पालन करना चाहिए, बड़े मुस्तैदी के साथ खुशी खुशी उसका पालन कीजिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे और इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो फिर आपके चारों तरफ आपको क्या नजर आएगा, हर कोई सुखी है, हर कोई खुश है और चारों तरफ जो है, जो वातावरण है, जो आपका एरिया है, समाज है, शहर है, नगर है, सभी बहुत साफ सुथरे नजर आएंगे। और फिलहाल चलते चलते आप सभी के लिए फिल्म जग्गा जासू से अरिजीत सिंह, और अरिजीत सिंह के साथ साथ दिया है उनका सुभांशु केशरवानी और अमित मिश्रा ने, इस गीत को सुनते सुनते आगे दीजिए अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। फिर मुलाकात होगी किसी रोज किसी कार्यक्रम में, लेकिन आज ही अगर दोबारा मिलना चाहते हैं तो यू हैव टू ट्यून 100.1 FM गोल्ड। 11:10 से लेकर आऊंगी FM गोल्ड पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। टाटा बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और निखत गांधी की आवाज में केदारनाथ फिल्म से काफिराना सुन रही है। साथ रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, जिसका नाम है तीन का तड़का, और मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ।

बज रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में 3:09 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का, दोपहर की बोरियत को थोड़ा सा दूर करने के लिए और प्यारे प्यारे रंग में आप तक ले आने के लिए मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ है। और आज के कार्यक्रम में मैं शामिल करूंगी ऐसे गीत जो सारा अली खान की फिल्मों की हो, क्यों? क्योंकि आज उनका है जन्मदिन। तो हमारी पूरी टीम के तरफ से और हमारे सभी लिसनर्स की तरफ से उन्हें ढेर सारी उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। और रुक करते हैं अगले गीत की ओर।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार, मैं शुचिश्मिता आप सबके साथ 107 FM रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप कार्यक्रम तीन का दरका। और अब रुक करेंगे परियोजना प्रस्तुति की ओर। आज मैं और अपनी परियोजना प्रस्तुति के माध्यम से भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBI के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जीवन अनिश्चितताओं से जो है भरा हुआ है। परिवार का कोई कमाने वाला सदस्य यदि अचानक से दुनिया से चला जाए तो परिवार को सिर्फ भावनात्मक आघात नहीं बल्कि उसके साथ साथ आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में जीवन बीमा परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। यह एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उनके नामित व्यक्ति को 2,00,000 तक का बीमा लाभ दिया जाता है। योजना की प्रमुख विशेषताएं कुछ यूं हैं कि योजना की खास बात यह है कि यह योजना शामिल होने के व्यक्ति की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास पात्र बैंक का या फिर डाकघर खाता होना चाहिए। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम वर्तमान में केवल 436 रुपये है। यह राशि खाता धारक की सहमति के अनुसार बैंक या डाकघर के खाते से स्वयं डेबिट हो जाती है। योजना की बीमा अवधि सामान्यतः जो है 1 जून से 31 मई तक की होती है। इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें निवेश या बचत का लाभ नहीं मिलता। यह एक शुद्ध टर्म जीवन बीमा योजना है यानी इसका मुख्य उद्देश्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार या नामित व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा देने का है। 18 से 50 वर्ष की आयु वाला पात्र बैंक या डाकघर खाता धारक इस योजना में शामिल हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो यह केवल एक बैंक या डाकघर के खाते के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या इसमें शामिल हो सकते हैं। योजना में प्रवेश की अधिकतम आयु 50 वर्ष है जबकि नियमित नवीकरण के साथ बीमा कवर 55 वर्ष की आयु तक जारी किया जा सकता है। योजना का महत्व कुछ यूँ है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सबसे बड़ा महत्व यूँ है कि बहुत कम वर्षीय प्रीमियर के से परिवार को जीवन बीमा सुरक्षा मिलती है। कल्पना कीजिए, यदि परिवार में कमाने वाला व्यक्ति ही अचानक से किसी वजह से ना रहे, उसकी मृत्यु हो जाए, 2,00,000 रुपये की बीमा राशि परिवार को तत्काल आर्थिक रूप से जो है आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। यह राशि बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च या अन्य आवश्यकताओं के लिए सहारा बन सकती है। एक महत्वपूर्ण सावधानी इस योजना को हम कह सकते हैं, योजना में शामिल होने के बाद प्रीमियर का समय पर नवीकरण बहुत जरूरी है। खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण जो है बीमा कवर प्रभावित हो सकता है। साथ ही पहली बार शामिल होने के वाले व्यक्ति के गैर दुर्घटना मृत्यु से पहले 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि लागू होती है। दुर्घटना के मृत्यु के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि जीवन का कोई भरोसा नहीं लेकिन भविष्य की तैयारी हमारे हाथ में है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसी सोच को आगे बढ़ाती है, कम प्रीमियर और परिवार के लिए जीवन सुरक्षा। इसलिए हमें बीमा की आवश्यकता को समझना चाहिए और योजना

0: बैंकों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए पढ़कर अपनी पात्रता के अनुसार बैंक या डाकघर में सही जानकारी प्राप्त कर इस योजना में अपने आप को नामांकित करना चाहिए।
1: परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

कार्यक्रम तीन का तड़का मैं सुचिष्मिता आप सबके साथ है और 3:24 स्टूडियो की घड़ी में वक्त 107.9 FM Rainbow दिल से दिल तक पसंद रहे हैं आप इस कार्यक्रम को। और अभी सुना आपने जो है ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में लव आजकल फिल्म से। करते हैं अगले गीत की ओर अतरंगी रे से ये फिल्म का गीत है श्रेया घोषाल की आवाज में आप सबके लिए चकाचक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
2: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
2: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
1: जी, और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडर, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, आम टम को देख लेगा।

0: तुम्हारा?
1: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर उटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
3: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
4: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
3: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
4: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
3: और अपने सुभाष बाबू?
4: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
5: कितनी सजा हुई?
1: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
3: क्या हुआ सुभाष बाबू?
1: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
2: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
6: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।

0: क्या खबर है? सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े,
0: उसका भी प्रभाव

0: ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चले।
0: चलिए।
2: सोलह जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
3: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
4: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
3: आदाब। ये सामान यहाँ रख दीजिए।
4: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
5: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
5: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो। ये अखबार कहां गए? हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
6: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
2: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
7: जय हिंद,
8: जय हिंद,
7: जय

यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए।

0: आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
4: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक हम साथ साथ।
1: सात बज के 3 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त, मैं सुजिश्मिता आप सबके साथ कार्यक्रम लेकर हाजिर। बुधवार की शाम हम साथ साथ छायालोक के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते किसी न किसी जोड़ी की बात करते हैं जो साथ हैं और साथ रहते हैं एक दूसरे के। और दोस्तों, आज की शाम आज़ादी की खुशबू लिए अगस्त का महीना हमारे सामने है और हम जो है अगस्त के महीने में हैं। चारों तरफ जो है 15 अगस्त के पहले तिरंगे की शान, देशभक्ति के गीत और दिल में एक सवाल, आखिर वह आज़ादी हमें मिली कैसे? क्या केवल तारीख बदलने से देश आज़ाद हो जाता है? क्या केवल सत्ता बदलने से देश आज़ाद हो जाता है? स्वाधीनता के पीछे होती है वर्षों की तपस्या, संघर्ष, त्याग और बलिदान। और आज के इस हम साथ साथ में हम बात करेंगे उसी बलिदान की। आज हम बात करेंगे उस कीमत की जिसे हमारे स्वाधीनता संग्रामियों ने चुकाई थी इस आज़ादी के लिए। आज हम बात करेंगे क्रांति और स्वाधीनता की।

बातें हो रही हैं क्रांति और स्वाधीनता की। स्वाधीनता के पीछे हमारी वर्षों की तपस्या की। आज 12 अगस्त को हम बात करेंगे उसी क्रांति की, उन शहीदों की और उस स्वाधीनता की जिसकी कीमत हमारे देशवासियों ने अपने खून से चुकाई थी। भारत की स्वतंत्रता की कहानी केवल एक आंदोलन की कहानी नहीं, यहाँ उन अनगिनत आवाजों की कहानी है जिन्होंने कहा अब और नहीं। अन्याय के सामने सिर झुकाने से इनकार करने वाली आवाज, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के और उसको तोड़ने का सपना देखने की आवाज, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछार करने वाली आवाज, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष लंबे समय से पनप रहा था और उसके विरुद्ध उठी वो आवाज़।

साल 1857। असंतोष एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आ गया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह जैसे वीरों ने जो है अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दे दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते ही आज भी साहस का तस्वीर जो है सामने आ जाता है। एक ऐसी महिला जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें बताती है कि क्रांति केवल हथियार उठाने का नाम नहीं, क्रांति उस हिम्मत का नाम है जो अन्याय के सामने खड़े होने का साहस देती है। लेकिन संघर्ष यही नहीं रुका, समय आगे बढ़ा और स्वतंत्रता आंदोलन ने नए रूप ले लिए। सदी में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष को जो है जन जन में से जोड़ दिया। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के हथियार को सब तक, हम सब तक पहुंचाया, उसे ही अपना हथियार बनाया। अन्याय के सामने झुके नहीं वो। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं है, लेकिन संघर्ष के रास्ते मानवता में से अलग नहीं होने चाहिए। और यही भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की खूबसूरती थी। एक तरफ अहिंसा का मार्ग था तो दूसरी तरफ ऐसे क्रांतिकारी जो मानते थे कि शासन को चुनौती देने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: हम साथ साथ।

7:36 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। और अब बात होगी उस व्यक्तित्व की जिसकी आवाज में तूफान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। उनका विश्वास था कि भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए जो है हर संभव प्रयास करना जरूरी है। आजाद हिंद फौज में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट इसका शानदार उदाहरण है।

यानी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाएं भी जो है पीछे नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी झांसी रेजिमेंट तक भारतीय महिलाओं ने इतिहास के पन्नों में अपने साहस की अमिट छाप छोड़ी।

अब जिक्र उनका, जिसे सुनते ही युवाओं की आंखों में चमक आ जाती है, जो क्रांति के पर्याय थे, शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विचार थे, वे सवाल पूछते थे, वे पढ़ते थे, वे बहस करते थे, वे समाज और देश के भविष्य के बारे में सोचते थे। उनके लिए आजादी केवल एक अर्थों में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना नहीं था, वे एक ऐसे समाज की सपना स्थापना करना चाहते थे, एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जिसमें शोषण और अन्याय के लिए जगह ना हो। उनका जीवन हमें बताता है, युवा होना केवल उम्र का नाम नहीं, बल्कि विचारों में ऊर्जा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का नाम है। भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका बलिदान आज भी देश के युवाओं को प्रेरणा देता है। और चंद्रशेखर आजाद, वो तो आजाद ही रहे, नाम में ही उनका संकल्प जो छिपा था, आजाद। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उनके सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करने का प्रण लिया था। वे अंग्रेजों के हाथों जीवित नहीं पकड़े गए। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था, तो उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मार ली। स्वयं के लिए उन्होंने अपनी अंतिम गोली बचा ली। उनका जीवन हमें बताता है, स्वाभिमान वह शक्ति है जो इंसान को परिस्थितियों में बड़ा बना देती है।

हमें याद रखना होगा कि क्रांति शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में जो आता है वो आता है हथियार संघर्ष युद्ध की तस्वीर, लेकिन क्रांति का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। क्रांति का अर्थ है सोच में बदलाव। जब कोई बच्चा कहता है मुझे भेदभाव स्वीकार नहीं, जब कोई युवा कहता है मुझे अन्याय स्वीकार नहीं, जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है, जब कोई नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसा के खिलाफ विरुद्ध खड़ा होता है, तो वो भी अपने स्तर पर बदलाव की शुरुआत करते हैं और हम उसी क्रांतिकारी चेतना को आगे बढ़ाने की जरूरत है आज इस बात का समर्थन करते हैं। आज इस अवसर पर हम उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को जो है नमन करते हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने जेल देखी, जिन्होंने यातनाएं सही, जिन्होंने परिवार से दूरी सही, जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। उनके बलिदानों को याद करके उनके लिए सिर्फ समर्पित करके कुछ गीत बजाना ये देशभक्ति नहीं। देशभक्ति वो है जब हम अपने देश को बेहतर बनाने का संकल्प लें, जब हम नफरत नहीं भाईचारा बढ़ाएं, भेदभाव नहीं समानता अपनाएं, हिंसा नहीं संवाद को संवाद का रास्ता चुने, अज्ञान नहीं शिक्षा का दीप जलाएं, अपने देश की स्वतंत्रता संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें। शहीदों की कुर्बानी तभी सार्थक होगी। इसी नोट के साथ आज सुचिश्मिता आप सबसे कहेगी टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए, साथ रहिए, मनोज से बनी आई आर एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक, और सोनू निगम की आवाज में इस गाने के साथ सुनिए आप

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:09 और 25 सेकंड। अभी आप सुन रहे थे छाया लोक कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसा गीत जिसमें बहुत सारे सिंगर्स की एक साथ आवाज थी। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना फिल्म ओम शांति ओम से दीवानगी दीवानगी। और इस गीत के साथ छाया लोक में आपका स्वागत है। 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली यॉर्स पर आप सुन रहे हैं छाया लोक अपनी दोस्त और होस्ट देविका के साथ। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना, उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज, साथ ही आवाज है जयेश गांधी की।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:22 और साथ ही साथ 10 सेकंड। दोस्तों आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली और पर कार्यक्रम छायालोक। और छायालोक के अंतर्गत आप सभी के लिए जो बेहतरीन तराने हैं एक के बाद एक आप सुन रहे हैं इन तरानों को। फिलहाल अगला जो गीत है उसकी ओर करते हैं रुख। ये गीत है अलका याग्निक के साथ सोनू निगम की आवाज़ में।

वेल फ्रेंड्स, मुझसे दोस्ती करोगे से आप सुन रहे थे जाने दिल में कब से है तू लता मंगेशकर के साथ सोनू निगम की आवाज में। और इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 8:36। एक के बाद एक बेहतरीन तरानों के नजराने हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिसका नाम है छायालोक। और दोस्तों, छायालोक में आप जो अगला गीत सुनेंगे उसके बारे में बता दूं, ये गीत जो है ये है फिल्म मुझसे मेरे यार की शादी है। इसके पहले आप जो गीत सुन रहे थे मुझसे दोस्ती करोगे से, लेकिन इस अब जो गीत आप सुनेंगे ये है मेरे यार की शादी है से सोनू निगम के साथ अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में एक बेहतरीन रोमांटिक सा तराना। तो आइए सुनते हैं इस तराने को 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स पर।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है आज के कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ आपसे विदा लेने का। और आपको बता दें कि अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कोई मिल गया से ये गीत। और अगला गीत आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत है, आप सुनेंगे लता मंगेशकर के साथ उदित नारायण की आवाज में ये गीत फिल्म दिल तो पागल है से। फिलहाल देविका लेती है आपसे इजाजत। गुड नाइट, शब्बा खैर।